वाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का

0: स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोद्योमिर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी विविध भारती केंद्र।
3: सुप्रभात समयान सुमनोहरमैन भक्ति गीतालु,
4: भगवत भावनाविष्कृत सुगंध कुसुमालु,
3: ప్రభాత సమయాన పరమాత్మకు సమర్పించే పూజా ప్రసూనాల మాల, భక్తి సంగీత హేళ.

0: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
1: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनयिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
3: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में

0: ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
1: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
2: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
0: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उरांव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
3: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
5: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
6: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल

0: ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन, फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1 रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोकसत्ते ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती, बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం తరతరాల తరగని ఆనందం అలరించే సంపూర్ణ వినోదం స్టూడియో క్లాక్ లో టైం 8:15 దాటి 30 సెకండ్లు. జనరంజని శ్రోతలు ఫోన్ ద్వారా కోరిన సినీ గీతాలు వింటారు. కార్యక్రమంలోకి వెళ్లబోయే ముందు

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: श्रोताओं, आपको बता दें कि आज है संगीतकार दान सिंह की पुण्यतिथि। उन्हीं को याद करते हुए आज की फनकार कार्यक्रम उन्हीं पर केंद्रित रहेगा। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को पुनः आप रात को 9:30 पर सुन सकते हैं और अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह की 9:30 पर यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रित रहेगा संगीतकार दान सिंह पर। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, कुछ ना कहो। इस फिल्म से उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल हैं, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: खुशखबरी
1: कहिए ना,
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
3: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
4: वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।

इस ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। श्रोताओं, आपको बता दें, आज है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, यानी सेलिब्रेटिंग फूड हेरिटेज 2026 की थीम है इस डे के लिए। ये हर साल 18 जून को मनाया जाता है। भोजन विरासत का जश्न है इसका अर्थ है। इसका उद्देश्य पारंपरिक खाद्य ज्ञान, स्थानीय सामग्री और पर्यावरण अनुकूल खान पान को बढ़ावा देना है। सतत खान पान का मतलब है ऐसा भोजन चुनना जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि भोजन कहाँ और कैसे उगाया जाता है तथा हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है। इसका महत्व ऐसा है कि हमें ध्यान देना होगा प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी और ऊर्जा की बचत की, और स्थानीय किसानों को समर्थन देना, यानी कि उन्हीं से मौसमी सब्जियां और फल खरीदना। भोजन की बर्बादी में कमी हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। पारंपरिक और क्षेत्रीय खाद्य संस्कृति का संरक्षण, ये भी तो हमारा कर्तव्य है। वैसे क्या करना चाहिए? स्थानीय और मौसमी फल सब्जियां ही खाना चाहिए और उन्हें किसानों

से ही खरीदना चाहिए। भोजन की बर्बादी को बिल्कुल ना करें। दालें, बीन्स और हरी सब्जियां अधिक खाएं। जैविक कचरे से खाद यानी कंपोस्ट बनाएं। प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। इस दिवस का संदेश है कि छोटे छोटे टिकाऊ खाद्य विकल्प अपनाकर हम स्वस्थ जीवन और सुरक्षित पर्यावरण में योगदान दे सकें। और सुनिए ये गीत जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाज में, दावते इश्क फिल्म से। कौसर मुनीर के शब्द, साजिद वाजिद का संगीत।

0: ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?
1: कभी खुशी कभी गम इस फिल्म का गीत अलका याग्निक, सोनू निगम और करीना कपूर की आवाजों में समीर का लिखा गीत है। धुन बनाई है संदेश सांडिल्य ने।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

फिल्म मोहब्बते से ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, उद्भव और कुछ साथी कलाकारों की आवाजों में, जिसमें शाहरुख खान, उदित नारायण, मनोहर शेट्टी, प्रथम

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दान

भगवान सिंह का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत दान सिंह के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन 1.5 बरस बीत गया। दान सिंह खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है।

उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि डांसिंग की

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि दान सिंह ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में दानसिंह को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना। गोरा गोरा

यहाँ आपको बता दें कि असल में बी एन शर्मा जिन्होंने भूल न जाना का निर्माण किया था वो फ्लैट में दान सिंह के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। दान सिंह ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल न जाना का।

फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964, मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त ये गाना गा रही हैं।

लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल न जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारेलाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहारी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी। और सैक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है, तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माई लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की वानगी देखिए।

अफसोस, 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दानसिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी याद।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार डांसिंग पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंधगोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंच के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठक भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपड़े।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबाझारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल

0: स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर दो दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: మీకు తెలుసా, ప్రపంచంలోని అనేక అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఉచిత వైద్యం ఎప్పటికీ ఒక కళ. భారత్ లో ఇది ప్రతి పౌరుడికి లభించిన హక్కు. 60 కోట్లకు పైగా ప్రజలకు 5 లక్షల వరకు విలువైన చికిత్సను ఆయుష్మాన్ భారత్ ఉచితంగా అందిస్తుంది. 19,000కు పైగా జన ఔషధి కేంద్రాలు 90% వరకు తక్కువ ధరలకే మందులను అందిస్తున్నాయి.
2: వ్యక్తికి జమీన్ घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 సంవత్సరాల విశ్వాసం, అభివృద్ధి, ప్రజా సంక్షేమం.
3: శబ్ద తరంగాలపై శ్రవ్య సౌరభాలను దరిచేర్చే సారథి,
4: విజ్ఞాన వినోదాలను శ్రోతలకు అందించే వారధి,
3: ఆపాత మధురం ఆలోచనామృతాల నిధి,

0: तो हम बात कर रहे हैं भाई
1: बसंती देवी बिष्ट की।
0: जो है उत्तराखंड की पहली जागर गायिका। और हम बता दें कि इनका जन्म हुआ 1953 में उत्तराखंड के चमोली जिले के लुबानी गांव में।
1: जी
0: और उनकी माँ बहुत अच्छा गाया करती थी, और अपनी माँ के साथ जो वो जो गीत सुनते सुनते बड़ी हुई, तो गांव में जो मेले लगते थे, जो त्योहार होते थे, तो माँ के साथ वो गाने भी गाया करती थी। और इसी दौरान गाते गाते उन्हें भी इन गीत से, उस संगीत से, जो लोक संगीत था वहां का, उससे प्यार होने लगा। और भाई जब आपके खून में कोई चीज रच बस जाती है ना, तो जब आप उस चीज को गाते हैं तो वो बड़ी दिल से आवाज निकलती है।
1: बिल्कुल। और वो पूरा जो माहौल था ना, वो बचपन से उनको मिल गया था,
0: जी
1: और गायन के इस प्रेम की वजह से उन्हें पारंपरिक जागर गायन शैली को नई पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जागर गायन करने वाली पहली प्रमुख महिला कलाकार मानी जाती हैं। ये जागर कला उत्तराखंड की लोक परंपरा से जुड़ी हुई है, जिसमें देवी देवताओं और लोक देवताओं को याद किया जाता है।
0: और आरती, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो जागर शैली परंपरागत रूप से पुरुष पहले प्रस्तुत किया करते, जैसे आपने भी कहा ना कि वो पहली महिला गायिका है,
1: जी
0: तो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में आ सके ना, इसीलिए इस परंपरा को तोड़ने वाली बसंती देवी ही रही। और तब से लेकर आज तक वो लोक गायन की ये जो परंपरागत शैली है, यानी कि जागर गायन की हम बात कर रहे हैं, इसको संरक्षित करने के प्रयास में लगी हुई हैं वो, और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए इसके भी प्रयास कर रही हैं। और उनके बारे में एक बात और भी गौर करने वाली है कि 5वीं कक्षा की जिला बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली भी वो पहली छात्रा
1: मतलब
0: थी।
1: बहुत कुछ उन्होंने पहला काम किया
0: जी
1: है। तो और उन्होंने आगामी 3 वर्षों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रति माह 20 रुपए की छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकी क्योंकि उच्च विद्यालय उनके घर और गांव से बहुत दूर था, और गांव के स्कूल में 5वीं कक्षा से आगे की जो पढ़ाई होती है वो नहीं होती थी, और यही मुख्य कारण था कि वो आगे की पढ़ाई अपनी जारी नहीं रख पाई थी।
0: और फिर क्योंकि पहले के जमाने में भी बच्चियों के विवाह भी छोटी उम्र में हो जाया करते थे, गांव में खास तौर पे ऐसा हुआ करता था। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि जब वो सिर्फ 15 साल की उम्र थी तो उनका विवाह हो गया, और तोपखाने के एक सैनिक में जो थे उनके साथ उनका विवाह हुआ। और जीवन का अधिकांश समय एक गृहिणी के रूप में ही उन्होंने अपना बिताया। पेशेवर संगीत करियर की शुरुआत उन्होंने की जब वो 40 बरस की हो गई थी, और अपने पति के साथ जब वो जालंधर गई तो वहां उन्होंने एक प्राचीन कला केंद्र में फिर से एक बार संगीत सीखने की शुरुआत की, और उनकी बेटी ने उनके शिक्षक के तौर पर हारमोनियम बजाने की शुरुआत की।
1: हाँ, उनकी बेटी के शिक्षक से उन्होंने उन्हें सिखाया था बजाना,
0: जी
1: तो यहीं से उनके करियर की शुरुआत भी हुई।

0: जन, फिल्मी गीत, त्योहारों जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाना शुरू किया। इसके बाद उनके पति सेवानिवृत्त हो गए और परिवार देहरादून में जाकर बस गया। बाद में उन्होंने 1996 में नजीबाबाद स्थित अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू किया, यानी वो रेडियो से भी जुड़ी हुई थी और वो
1: ए श्रेणी की
0: कलाकार थी। देखिए मतलब जमीनी स्तर से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया।
1: और साल 1996 की हम बात कर रहे हैं, तब वो पहली महिला प्रधान भी बन गई अपने क्षेत्र की। हाँ। और कुछ समय के बाद जब उनको लगा कि बचपन में अपनी माँ और गांव के अन्य बुजुर्गों से जो संगीत की अनूठी शैली की जो प्रतिभा उन्हें मिली है, जिसे जागर गायन कहा जाता है, तो उन्होंने महसूस किया कि लोग इसको गा ही नहीं रहे, इसे भूल रहे हैं, और शास्त्रीय गीतों को खोज करने के लिए अपनी पुरानी धुनों में प्रस्तुत करने का दायित्व इन्होंने फिर संभाल लिया।
0: जी, और बसंती देवी बिष्ट की गायकी थोड़ी नाक से निकलने वाली आवाज और लय की धीमी गति के लिए जानी जाती है, जो उत्तराखंड की गढ़वाली गायन शैली का विशिष्ट रूप माना जाता है। बसंती देवी बिष्ट की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोरिया रे, धोखेबाज दगड़िया, न्योली, प्यारी सुमना, दाजी बॉर्डरा और फोन करना, ओ सियाली साली रुकमा, पारा भीड़ा जादियो और देवारा जारे जू, और भी बहुत सारी हैं।
1: तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, अगर वो सुन रहे हैं और इस क्षेत्र के वो लोग हैं, तो वो जरूर जानते होंगे इन पंक्तियों को जो तो आपने बताई भी कि उनके प्रसिद्ध गीत कौन से हैं और ये किस तरह गाए जाते हैं, वो इस बारे में भी जानते होंगे।
0: ये रुकमा वाला तो मैंने सुना हुआ है
1: जी। और बसंती देवी की जो उपलब्धियां हैं, उनके जो पुरस्कार हैं, अगर इनकी बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मातोश्री अहिल्या देवी सम्मान से उन्हें नवाजा गया। लोक संगीत के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा, इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो बात लोक धुनों की हो रही है, एक ऐसा गीत सुने जिसमें कुछ लोक धुन जैसी झलक मिलती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम बात कर रहे थे ना कि सबका कुछ ना कुछ अच्छे के साथ साथ बुरे अनुभव भी जुड़े होते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के रहते हैं अनुभव, कभी अच्छे भी रहते हैं तो बुरे भी रहते हैं।
0: और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई बुरा अनुभव रहा और आपको पछतावा हुआ कि क्यों आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, इसे तो अच्छा होता कि थोड़ी से हम कष्ट लेते, बाजार जाते और वो चीज खरीद लाते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बाजार जाके उस चीज को छू के देखना, पकड़ के देखना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना उस दुकानदार से, वो एक अलग बात हो जाती है। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उस ऐप पे देखते हैं कि उसके बारे में क्या जानकारी दे रखी है, और पूरी दे रखी है भी कि नहीं वो भी हमें नहीं पता होता है।
0: कई बार तो हम सिर्फ लुभावने ऑफर देखकर वहां से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, या हम देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है।
0: हाँ, और जब सामान हमारे पास आता है तो या तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, या तो एक के साथ एक फ्री वाला जो ऑफर था ना, वो फ्री की चीज मिली नहीं और हमसे डबल पैसे में वो चीज हमें सिंगल ही दे दी गई। तो इस तरह के अगर अनुभव रहे हैं तो इसके बारे में देखो ना कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार लोग आकर्षक ऑफरों और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती, और बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या फिर बेहतर और कीमत से बेहतर नहीं होता, कीमत कहीं ज्यादा होती है, तो पछतावा होता ही है। इसीलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी और उसके जो रिव्यू है वो कीमत की जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता हमारे जो लिखते हैं कि बात कोई भी हो उसके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू, उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के भी दो पहलू होते हैं। आप कोई भी चीज कहीं से भी कभी भी घर बैठे ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्य खरीदारों के रेफरेंस पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आप उत्पाद को फिजिकली देखकर या छू नहीं सकते, फिटिंग का भी पता नहीं लगा सकते। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की ज्यादा संभावना रहती है, असली के बदले नकली उत्पाद भेज दिया जाता है, तब या कोई चीज पसंद नहीं आने पर वापस भेजने के बाद रिफंड प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रलोभनों से आप बच के रहिए।
0: बिल्कुल, हमें किसी ब्रांड नेम को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने बड़े ब्रांड का सामान हमें कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन उसी की जो दूसरी तीसरी कॉपी होती है, दरअसल ये वो वाली कॉपीज होती हैं जिन्हें सेकंड या थर्ड में कई लोग निकालते हैं। तो हमें सिर्फ फोटो देखकर अंदाजा नहीं हो पाता, और इस तरह की जो प्रलोभन है उनमें फंसकर हम गलत

0: बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है ना, जो हम कपड़े मंगाते हैं उसकी फिटिंग उसमें दे रखी होती है जो वो नहीं निकलती, या रंग एकदम अलग होते हैं उससे, तो इस तरीके की चीजें भी काफी होती हैं। कपड़ा जो दिया होता है कि ये वाला कपड़ा है, वो कपड़ा भी नहीं होता, तो इस तरीके के फ्रॉड काफी होते हैं।
1: रंग की तो जब आपने बात कही, तो मान लीजिए आपके मेरे दोनों लोगों के हाथ में अलग अलग फोन है, एक ही रंग पर हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपके फोटो से वो कलर अलग आ सकता है, मेरे फोटो मेरे मोबाइल से जब पिक्चर क्लिक की जाएगी तो उसका रंग थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसी तरह की कुछ बातें होती है ऑनलाइन शॉपिंग में, जो रंग हमें दिखते हैं वो असल रंग से थोड़े से भिन्न हो सकते हैं। और किसी भी तरह की चीजें हम खरीद सकते हैं ना, तो हमारे एक श्रोता जिन्होंने कुछ पौधे खरीदे वो अपना अनुभव लिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पौधों की खरीदारी मैं करती हूँ, कुछ पौधे अच्छे मिलते हैं, कुछ खराब भी निकल जाते हैं, और कुछ पौधे जिनकी मैं खरीदारी करती हूँ वो आम नर्सरी में नहीं मिलते हैं, तो ऑनलाइन ही हमें खरीदने पड़ते हैं।
0: और लेकिन ये चंचल जी, हमने भी मंगाए हैं कई बार पौधे, जैसे पौधे जब हम मंगाते हैं तो ये देखना चाहिए हमें कि उसमें वो क्या दे रखा है, उसमें पूरी डिटेल क्या रखी कि वो वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम बाद में उसे वापस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि नहीं वापस नहीं हो सकता है ये।
1: इसी बात पर देखिए एक बड़ा अच्छा सा कमेंट है, नॉन रिटर्नेबल आइटम। आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि सामान पसंद ना आने पर पता चलता है कि इसे वापस या एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं, कई बार हिडन चार्जेस भी इसके लिए होते हैं और रिटर्न करने के लिए अलग से शॉपिंग चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह की जो भी पॉलिसीज हैं आप उनको पहले से पढ़ना
0: चाहिए
1: ताकि आपके साथ में कोई धोखेबाजी दगाबाजी ना हो।
0: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कई बार लोग आकर्षक ऑफर्स के और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या बेहतर कीमत कहीं और मिल जाती है तो उन्हें पछतावा होता है। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी, रिव्यू और कीमत अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए।
1: और इसी में आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा उम्मीद बनाम हकीकत, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में लिख रहे हैं, इसका शिकार हमें होना पड़ता है। स्क्रीन पर दिखने वाली चीज, चमचमाती चीज जब घर पे पहुंचती है तो वो पूरी तरह से अलग निकलती है। और नॉन रिटर्नेबल आइटम्स भी होते हैं, पसंद ना आने पर पता लगता है कि इसको तो एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता और अलग से हमें बहुत सारा भुगतान करना पड़ जाता है।
0: बिल्कुल। बहुत सारी चीजें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जब करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें कि आपको क्या खरीदना है, उसकी जरूरत है भी कि नहीं है, इस तरह से करें और पढ़ लें पहले पूरी जो चीजें दे रखी हैं कि वो क्या चीज है, वो वापस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पछतावा ना होता। कि
1: कुछ बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम तोहफे में देने के लिए कोई चीज ले रहे होते हैं, हमने मंगाई बिना खोलकर भी नहीं देखा और वो जिस तरह की पैकिंग में आई थी उसी पर एक और गिफ्ट रैप हमने लगाया और हमने सामने वाले को तोहफे के रूप में वो दे दिया। जब सामने वाले ने खोला तब हमें पता लगता है कि उनके पास कोई अगर कम उच्च स्तरीय वाली चीज गई है, तो वो जब वो शिकायत करते हैं या नहीं भी करते, सिर्फ कहकर उस बात को बता देते हैं, तो बड़ा अफसोस मन में आता है।
0: बिल्कुल। और अच्छा भी नहीं लगता ना कि किसी को एक ऐसे उपहार दे रहे हैं हम और वो भी अच्छा ना निकले, तो जरूरी है हम बेहतर होगा कि जितना ज्यादा जा सकें बाहर वहां से खरीदें।
1: बिल्कुल। देने वाले की नीयत भले अच्छी थी, उसने उसके लिए कीमत भी अच्छी चुकाई, लेकिन कंपनी ने अगर कोई धोखा किया है तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो निम्न स्तरीय सामान था। इस तरह की धोखेबाजी ना हो। और भी कमेंट्स हम पढ़ेंगे, पहले एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, ये सही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कई बार एक क्लिक के बाद में जो हम फैसला हमने लिया था और क्लिक कर दिया, वो पछतावे का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो चीज़ होती है जो तस्वीर या विज्ञापनों में बड़ी शानदार दिख रही होती है, लेकिन उम्मीदों पर हमें हमें खरीद नहीं उतरती जब वो हमारे हाथ में होती है।
1: बिल्कुल.
0: सेल देख कर खरीद ली जाती हैं चीज़ें, कपड़ों के रंग और गुणवत्ता जो है वो तस्वीरों से बहुत अलग होती है।
1: और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से सबसे बड़ा पछतावा, भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था. खैर कोई बात नहीं है, अब एक बार खरीद ही लिया तो मिले रद्दी के सामान को देख कर घबराइए मत, अपितु उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजा कर ही करिए. जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छे से देखभाल करके ही खरीदें, मगर लगता है कि इसके लिए महानगरों में समय का भी अभाव है. और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है. ऐसे ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन पके हुए भोजन की ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए.
0: बहुत सही सलाह दी है उन्होंने। और ये बात भी सही है कि जो महानगरों की जिंदगी है, कई बार लोगों के पास काम के चलते समय नहीं होता, या त्योहारों का समय जब होता है ना, जब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, खासतौर पर बाजारों में इतनी भीड़ होती है, तो उस भीड़ में जाने से बचने के लिए भी कई बार लोग ये काम करते हैं। और बहुत सारी चीजें अब ऐसी हो गई हैं जो घर पर 5 से 10 मिनट में जब हमें उपलब्ध हो जाती है, घर पर कोई है नहीं सामान लाने के लिए, तब तो उनमें भी धोखाधड़ी हो जाती है, चाहे वो घर के दूध, दालें, सब्जियां, ऐसी चीजें ही क्यों ना हो, तो
1: बिल्कुल.
0: सोच समझ कर ही
1: और
0: आपको करना
1: बहुत
0: है।
1: सारे लोग बहुत सारी चीजें जो ऐसी चीजें जो इतनी जरूरी नहीं भी हैं आज ऑनलाइन मंगानी, वो भी ऑनलाइन ही मंगाने लगते हैं कि चलो हम क्या करेंगे,
0: जी
1: बाजार जाके यहीं से मंगा लेते हैं. तो फिर फ्रॉड होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की चीजें पकी हुई जैसे इन्होंने बताया वो चीजें हमें नहीं मंगानी चाहिए ऑनलाइन. और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से, तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए.
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा होता है गलत साइज के कपड़े, खराब क्वालिटी, उत्पादों की तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना। इनसे बचने के लिए हमेशा ग्राहक समीक्षाएं यानी रिव्यूज जो होते हैं और जो रेटिंग्स दिए जाते हैं और रिफंड की जो नीतियां हैं, इन सब चीजों को एक बार जांच लेना चाहिए। केवल प्रतिष्ठित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना है। यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के मुख्य पछतावे से बचना हमें होगा।
1: बिल्कुल. और चंचल देखो, एक अंतराल का समय हो गया.
0: जी

0: विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली चल रहा है और हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे
1: हाँ
0: में। कमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, बातें और भी हैं, लेकिन पहले एक गीत
1: सुन लेते हैं।

0: हमारे एक श्रोता का कमेंट है, उफ ये ऑनलाइन शॉपिंग, कभी खुशी कभी गम. अभी हाल ही ऑर्डर किया गया एक सामान है, उम्मीद है जो मंगवाया गया वही आइटम मिलेगा. मतलब इन्हें अभी तक उस सामान की डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में लिख रही हैं. और तब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए. पिछली बार पछतावा मिला जब गोल्डन और व्हाइट पर्ल का ऑर्डर दिया था, मगर ड्रेस एक धुलाई में ही ऐसी निकली कि मेरे सारे अरमान भी धुल गए.
1: तो वैसे एक हमारे श्रोता है, वो लिखते हैं कि मैंने भी सभी बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी करें, और मैं भी सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं.
0: आगे श्रोता लिखते हैं कि बेटे ने एक बार लैपटॉप टैबलेट स्क्रीन पर काम करने वाली स्टाइलिश पेन इस तरह की कुछ चीजें मंगवाई थी जिनमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, और जैसे ही इन चीजों को उपयोग में लाया तो पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं. तुरंत संपर्क किया और बहुत तकलीफ हुई इन चीजों को रिटर्न करने में और अमाउंट को वापस अपने प्राप्त करने में. इसीलिए मैंने बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी किया करें. और जैसा कि आपने बताया था कि इनकी पत्नी है वो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं करती हैं, बच्चे हैं वो कर लेते हैं.
1: बहुत सारी चीजें अच्छी भी आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीजें खराब ही आती हैं.
0: लेकिन आज हम फिलहाल वही अनुभव ले रहे हैं जो इनको पछतावा हो.
1: और एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि शॉपिंग की कहूं तो भतीजे की शादी में बिटिया रानी ने कुछ कपड़े मंगवाए, सब गड़बड़ हो गया एन समय पर, फिर आखिर बाजार से तुरंत फुर्ती से दूसरे खरीदने पड़े तो पैसे गए और जो बुलाए वो भी नहीं आए. इससे अच्छा बाजार से अपनी पसंद के ही खरीदें, यही बेहतर होगा कि उनको दो बार पैसे खर्च करने पड़े.
0: बिल्कुल, आप बहुत सारे अति उत्साहित होकर ऐसे कोई चीजें ना खरीदें, ध्यान रखिएगा. और आज बता दें कि गुरु अर्जुन देव शहीद जो हैं, गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस है और ये सिख धर्म के 5वें गुरु माने जाते हैं. और इनका बलिदान दिवस ज्येष्ठ माह की 24वें दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह किया तो लाहौर की तरफ वो चल पड़ा, और रास्ते में गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सहायता भी की, और जहांगीर ने इसे राजद्रोह मानकर उन्हें सजा सुना दी और उन्हें बहुत सारी यातनाएं देकर शहीद किया गया था. और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता करने से मना कर दिया था, और सिख धर्म के इतिहास में उन्हें पहला शहीद माना जाता है.
1: जी, बहुत ही बड़ी बात है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं. और आज
0: ये जो दिन होता है ना, इस पर बहुत सारे जो गुरुद्वारे होते हैं वहां पर शब्द कीर्तन होते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और छबील यानी कि मीठे प्याऊ, मीठे पानी की जो प्याऊ होते हैं वो लगाई जाती है, और लंगर यानी कि जो भोजन लंगर होता है उसकी व्यवस्था की.
1: बिल्कुल, और लंगर का खाना चंचल जी इतना अच्छा, इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है ना कि मन करता है कि आप वहाँ रोज जाके खाएं, क्योंकि लंगर की सेवा वो हमेशा करते हैं
0: और वो बहुत श्रद्धा से पकाया गया भोजन होता है. वो सिर्फ भोजन नहीं होता, वो प्रसाद.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और अब हम एक और दिवस है इसके बारे में बात करें कि गीत सुनने
0: पहले गीत सुन लेते
1: बिल्कुल गीत सुन लेते हैं.

0: मोटा काटें और पानी में उबालने के लिए उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसा ना करें। इसीलिए इन्हें मध्यम आकार के आकार में काटें। और आलू बैंगन अक्सर काले पड़ जाते हैं, तो इन्हें जैसे ही काटें तुरंत नमक वाले पानी में रखें, जिससे वो काले नहीं पड़ेंगे। और लहसुन की कलियों को कुछ देर गर्म पानी में भिगोकर रखने से छिलका बड़े आसानी से निकाला जा सकता है।
1: वाह क्या बात है। और एक हमारी श्रोता है जो बहुत ही, उन्होंने तो बहुत ही मजेदार सा कमेंट किया है, गाना ही लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि खाने बनाने का समय का टिप्स हम क्या दे सकते हैं भला, जिसे खाना बनाना ना आया, न गाना आया, न बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ दिलबर के हाथों का खाना खाना आया। तो मतलब ये इन्होंने खाना खाना सीखा है, खाना बनाना नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, आप अभी भी आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं,
0: नहीं भी खाना बनाते तो सिर्फ अगर मदद भी करेंगे ना अपनी बहन की, माताजी की, श्रीमती जी की, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, ये भी बहुत बड़ी बात।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी तैयारियां करा दीजिए, सामान ले आइए या उनके लिए कुछ अच्छा ले आइए जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा अच्छा खाना खिला पाए।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है। खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए, जिससे समय की बचत हो जाती है। मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए ताकि कोई चीज कम या ज्यादा ना हो जाए।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि प्याज को अच्छी तरह सुनहरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है। सब्जी या दाल में ज्यादा नमक अगर हो गया है तो करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी। गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं। और ग्रेवी में दही मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इससे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं।
0: अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए। इससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है। मलाई को 8 दिन, अगर मलाई से निकाल रहे हैं तो उसे 8 दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें। मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ डालकर मक्खन को तुरंत रखें और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है उसमें बड़ा स्वाद होता है।
1: बिल्कुल। और चंचल जी हम एक संदेश को सुन लेते हैं, इसके बाद हम बात करें आगे की।
0: जी
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है, उन्हें छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं है तो पूरे हाथ को हाथ पर सूखा आटा लपेट ले और उसके बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें ध्यान है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि आज है 18 जून जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है।
1: बिल्कुल, और गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन है जिसे अच्छे खान पान की कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। इसे किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली या फिर स्थानीय भोजन के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी कार्य जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए।
0: बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं, और कई तरह के जो व्यंजन हैं उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और अब एक गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: भाई ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत और समय हो चला है सखियों से विदा लेने का।
1: तो आरती श्रीवास्तव को और
0: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों, गर्मी की इस चिलचिलाती दोपहरिया में कोई चीज सुकून देता है तो वो है पानी या फिर शरबत या फिर आइसक्रीम। लेकिन इसके अलावा इन सब से परे जो सुकून और ठंडी छांव देता है वो है सुरीले गीतों की सौगात। सुरीले गीतों की फरमाइश करते हैं आप सभी श्रोता, मीठी और दिलचस्प बातें करते हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातों और गीतों का। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं ठाणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद चौहान है।
0: रामेश्वर जी, क्या काम काज करते हैं आप थाने में?
1: मेरा काम है, छोटा मोटा दुकान है, घर के अंदर ही है, हॉल और अस्तर ये सब है।
0: अच्छी बात है, ठीक है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी काम अच्छे होते हैं, काम करना चाहिए, कोई काम छोटा नहीं होता।
1: हाँ, जिंदगी तो इसी में निकल गई हमारी, पिछले 32 साल से ही कर रहा हूँ।
0: तो आप बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रमेश जी?
1: वो एक कुल दो मालिक का है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा,
0: तुझे दीप कहूँ या तारा। तो किसके लिए सुनना चाहते हैं? कभी बच्चे को गाकर सुनाए ये गाना आपने?
1: बच्चे लोग को तो मैं बहुत सुनाता हूँ, लेकिन आजकल पुराना गाना सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता इन लोग।
0: अच्छा, नए गाने पसंद करते हैं बच्चे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत करते हैं खत्म। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूँ मैम, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से।
0: तो आपका गांव कैसा है, जरा गांव की कुछ विशेषता बताइए अपने।
1: गांव बहुत बड़ा है मैम, यहाँ की मतलब आबादी 5,000 की समथिंग है मैम।
0: और पैदावार क्या?

0: होती है?
1: सर यहाँ पे सोयाबीन मुख्य खेती मतलब बोनी होती है सोयाबीन की।
0: और सोयाबीन बहुत पौष्टिक होता है खाने के लिए, बहुत रिच प्रोटीन होता है।
1: जी जी मैम।
0: तो व्यापार भी करते हैं, मतलब बिकता भी है सोयाबीन या फिर खाने भर का?
1: हाँ मैम, मंडी के लिए भी ले जाते हैं।
0: अच्छा, और बाकी चीजों में जैसे दाल चावल और गेहूँ धान, इन सब में क्या होता है ज्यादा पैदावार?
1: अरहर होती है मैम यहाँ पे, मूंग भी होती है, उड़द भी होता है, मूंगफली भी होती है मैम।
0: भाई देखिए, गांव मतलब जब आम का मौसम है, गर्मी का मौसम यानी आम का मौसम, और इस समय आम जो लोग गांव में रहते हैं उनको आम खाने का बड़ा सुख मिलता है, तो बाग आपके पास भी है?
1: चार पांच पेड़ लगे हैं मैम हमारे खेत पे।
0: अच्छा, सिर्फ चार पांच पेड़? भाई हमने तो
1: चार पांच ही
0: बाग देखे हैं, वो बड़े बड़े बाग दूर दूर तक फैले, आम के पेड़, जामुन के पेड़। संख्या पेड़ों की कम हो रही है ऐसा लगता है आपको?
1: नहीं नहीं मैम, गांव में तो बहुत है, लेकिन हम खेत पे लगाए हैं इसके पांच छह पेड़।
0: अच्छा अच्छा जी, बताएं कौन सा गाना आपको सुनवाए?
1: देवफासनम का सुनना है मैम।
0: कौन सा?
1: अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार के, ये गीत की बोल है मैम।
0: अच्छा, क्या कभी दिल टूटने की बात आई थी क्या जीवन में ऐसा गाने?
1: नहीं नहीं मैम, तेरे पर नहीं, नहीं पसंद नहीं है मैम।
0: अच्छा अच्छा जी, एक समय जब फिल्म आई थी ना तो ये गाना बहुत मशहूर हुआ था, हर किसी की जबान पर ये गाना होता था। तो चलिए, शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मेरा नाम नई मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कश्मीर की किस जगह से?
1: जी मैं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है बड़गाम, ये एक खूबसूरत एरिया में पड़ता है, एक टूरिस्ट एरिया में ये पड़ता है।
0: वाह भाई वाह। तो श्रीनगर से कितनी दूर है आपका गांव?
1: हम 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से।
0: अच्छी बात है। तो अगर पर्यटक वहाँ जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या सुविधा है, गाड़ी से या घोड़े से, कैसे जाया जाता है?
1: बस गाड़ी से आते हैं। और जो कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे बड़गाम में ही मौजूद है। और अब तरह तरह की सड़कें भी है और गाड़ी से भी आते हैं, और जो हमारा जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पर कोई सैलानी घोड़े को भी पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या काम काज है वहाँ?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, टेल मार्बल और सिटी की सामान बेचता हूँ, जैसे दीवार पर पेंट पेंट लगाते हैं वही मैं बिजनेस करता हूँ।
0: अच्छी बात है। तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है?
1: थोड़ी गर्मी भी है, तो जून का महीना चल रहा है, गर्मी भी है लेकिन साथ साथ कभी कभी बारिश भी होती है, और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में भी बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे सैलानी भी आते हैं, हमारे कश्मीर के अंदर बहुत सारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं।
0: क्या बात है। गर्मी तो आपके लिए होगी क्योंकि आपकी आदत ज्यादा ठंड की है, जो सैलानी आते होंगे उनके लिए ज्यादा गर्म नहीं लगता होगा।
1: यहाँ पर ज्यादा 35-35 डिग्री यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के कई शहरों में 40 से भी ऊपर डिग्री गर्मी होती है,
0: 48
1: नॉर्मल सी लगती
0: जी। तो बहुत ज्यादा गर्मी से जूझते हुए जब वहाँ लोग पहुँचते होंगे तो ठंडक महसूस होती होगी। वहाँ की कुछ नदियों, वहाँ की झील के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए, अगर आपको जानकारी है तो।
1: हमारे इलाके में सबसे एक मशहूर झील है, उसको दूध गंगा कहते हैं। उनका जो पानी बिल्कुल साफ और नेचुरल पानी होता है, और अगर आप हम जंगल के उस पार जाएंगे या जंगल के उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पर टूरिस्ट है, वहाँ पर बहुत सारे नदियाँ है। जाए अगर आप पहलगाम की बात करेंगे, सोनमार्ग, गुलमार्ग या दूध पत्र की तरह की नदियाँ हैं जो बहुत ही उनका पानी भी मीठा है और साफ भी है। और अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर का आपको ऐसा पानी मिलेगा।
0: पहलगाम और गुलमर्ग के पास तो लिद्दर नदी भी बहती है, हमें याद है कि
1: आपको सबसे मालूम
0: वो,
1: जी आपको पता है ये पहलगाम के पास कश्मीर में पड़ता,
0: उस नदी का पानी हमने छुआ भी, बहुत ठंडा पानी था क्योंकि हम ठंड के मौसम में गए थे। अच्छी बात यह है कि पानी बिल्कुल पारदर्शी लगता है। बताइए इस समय गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: ये साजन फिल्म का नगमा ही देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फोन किया और कश्मीर के बारे में इतनी उम्दा बातें आपने शेयर की श्रोताओं के साथ। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं मध्य प्रदेश से देवास जिले से गोविंद प्रसाद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: तो गोविंद जी, देवास मध्य प्रदेश किसी खास व्यक्ति के लिए संगीत के लिए मशहूर है, शास्त्रीय संगीत के एक मर्मज्ञ वहाँ के मूर्धन्य संगीतज्ञ पंडित कुमार गंधर्व जी, जो उनका निवास है, देखा है आपने? बाहर से देखा होगा, बहुत सुंदर बना हुआ है
1: वो। क्या है, वैसे खातेगांव से देवास की दूरी 100 किलोमीटर है करीब।
0: अच्छा, तो गए हैं आप
1: देवास? वो आना जाना रहता ही रहता है
0: जी। बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले वहाँ तक जाते हैं, पंडित कुमार गंधर्व के दरवाजे तक मत्था टेक कर आते हैं। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सर वो बरसात का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल कर।
0: क्या बात है, बहुत सुरीला गाना चुना है आपने। तो क्या पुराने गाने ज्यादा पसंद आते हैं आपको?
1: हाँ, वो क्या है, पुराने गाने ही पसंद करता हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि शुरू से ही मेरे को लगाव है ये गाने पिक्चर से। क्या है कि मेरे रेडियो का बहुत शौकीन था शुरू से ही, 60-62 से ही।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो घर वालों ने मेरे को रेडियो ट्रेनिंग में भेज दिया था। पहले वाल वाले रेडियो चलते थे,
0: यानी
1: लगती थी कि उसकी ट्रेनिंग होती थी।
0: अच्छा।
1: सीखने के लिए तो मेरे को इंदौर में भेज दिया था सीखने के लिए। तो फिर मैंने इंदौर में भी काम किया, फिर खातेगांव में दुकान खोल दी रेडियो की।
0: अरे वाह,
1: रेडियो
0: क्या बात है। तो अभी भी है रेडियो वाली दुकान आपके पास?
1: अब तो मैंने बंद कर दी, अब तो मेरे से बनता नहीं है।
0: तो क्या करते थे, रिपेयरिंग करते थे?
1: हाँ, रिपेयरिंग करता था और वॉल वाले रेडियो बनाते भी थे।
0: अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। वॉल वाले रेडियो अब मिलते नहीं है?
1: हाँ, 5 वॉल 3 वॉल 2 बैंड 3 बैंड ऐसे चलते थे वो।
0: जी जी, तो अभी लोग आपसे कहते हैं कि मेरा रेडियो खराब हो गया, जरा रिपेयरिंग करके दे दो?
1: नहीं, अब तो अपने से बनता भी नहीं है, अब रेडियो का जमाना है ही नहीं। अब रेडियो का जमाना खत्म हो गया, धीरे धीरे करके फिर ट्रांजिस्टर शुरू हो गए सेल वाले, अब सेल वाले से अब मोबाइल पे आ गए।
0: लेकिन सुनना कहाँ बंद हुआ, रेडियो से प्यार तो वैसे ही है।
1: सुनना तो नहीं रहा अब, तो सुनना तो और ज्यादा होगा, क्योंकि पहले आजकल तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से देश भारती आकाशवाणी लगता था, और आजकल तो क्या है कि घर बैठे ही, मतलब घर में मिल रहे हैं सभी स्टेशन में,
0: मोबाइल पे भी सुन सकते हैं आप।
1: हाँ, मोबाइल।
0: पहले वो जो रेडियो बड़ा वाला होता था उसमें आप वो जो बटन होता था, बटन को घुमाते रहो, कई बार विविध भारती पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, मुश्किल होती थी।
1: दिक्कत होती थी, हाँ, इधर से उधर तक नहीं लगता था
0: जी। लेकिन उसका एक अलग आनंद था उस रेडियो का।
1: हाँ, वो तो अलग ही था, उसकी उस प्रकार की उसकी बॉडी भी इतनी अच्छी बनती थी कि संगीत में मजा आ जाता था। और इससे सारंगी वगैरह इतने भी उस टाइम तमाम, मतलब उसका जमाना नहीं था संगीत का,
0: बिल्कुल
1: हारमोनियम भी इतने अच्छे लगते।
0: बहुत सारे कलाकारों को रेडियो ने मंच दिया, बहुत सारे कलाकार को रेडियो ने गढ़ा, तो रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है जीवन में हम सबके। तो बरसात फिल्म का गाना आपने पसंद किया है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम। और अब आपको सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: मैडम जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: हाँ जी मैडम जी, मैं करणवीर सिंह पॉल जलंधर पंजाब से।
0: करणवीर सिंह जलंधर पंजाब के बारे में बताइए, क्या हाल चाल है जी?
1: बिल्कुल ठीक मैडम, बहुत बढ़िया। अभी तो थोड़ी दो दिन बारिश हुई है तो मौसम अभी ठंडा हो गया है। पहले तो बहुत ज्यादा तपिश थी, तो अभी फिर वैसे बारिश होने के चाहते शाम तक बारिश हुई।
0: और गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो राहत बहुत मिलती है, लेकिन उसके बाद जब बारिश रुक जाती है
1: राहत मिलती है। इधर तो पहले तो 45 टेम्परेचर हो गया पंजाब में, अभी कुछ राहत मिली है पहले से। तो आप सुनाओ, मुंबई का कैसा हाल है?
0: बस मुंबई में भी गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, बारिश का इंतजार है हम सबको, और बारिश के छींटे आप अपनी बातचीत के जरिए और गानों के जरिए बता दीजिए। वैसे भी पंजाब का लोकगीत बहुत समृद्ध है।
1: बिल्कुल जी, हम तो विविध भारती से, हम प्रसार भारती से 1970 से लेकर जुड़े हुए हैं।
0: क्या बात है,
1: तो आज तक बहुत हमें हमारा इन्होंने साथ दिया है, तो 90 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। तो हम तो कहते हैं अभी 10 साल और बाकी है, सेंचुरी हो जाएगी पूरी, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और सेंचुरी होगी वो तो सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद भी विविध भारती चलती रहेगी, रेडियो चलता रहेगा।
1: बिल्कुल चलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी, लेकिन हमें बहुत लगेगी, हमें देखो इतना साल हो गया छोटे।
0: तो कोई पंजाबी लोकगीत वगैरह याद है आपको?
1: पंजाबी लोग हमारे सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर ने बहुत लोकगीत गाए हैं, लेकिन मेरे को उनका तो याद नहीं। मेरे को गुरदास मान का एक गीत बहुत ज्यादा है,
0: गा के सुनाइए ना श्रोताओं को हमारे।
1: गुरदास मान जी का गीत है बह के वेख। हाँ। वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने, वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने। बस इतनी दो लाइन बोलेंगे।
0: जी जी बढ़िया, और वहाँ का खान पान भी बड़ा मशहूर है, बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल जी, सर्दी होती है तो सर्दी में तो हमारे मक्के की और सरसों का साग।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: और मक्खन घी दही सब कुछ।
0: क्या बात है,
1: फिर तो

0: वाह वाह वाह। आप अपने वहाँ के बारे में बताइए, किस चीज की पैदावार वहाँ पर होती है आपके गांव में?
1: हमारे पंजाब में ज्यादा करके ना गेहूँ होता है, तो जैसे अभी धान की खेती शुरू हो गई है, गेहूँ होता है, गन्ना होता है, ये खास चार फसलें ये खास होती है, बाकी पशुओं के लिए चारा भी होता है। ये चार फसलें तो वैसे हमारे पॉपुलर है ना, ज्यादा करके होती है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया और धान हो गया।
0: तो मक्का होता है तो मक्के की रोटी और सरसों का साग तो मशहूर है ही है।
1: बिल्कुल जी, मक्के की रोटी, सरसों का साग, जैसे मक्के के भुट्टे, भुट्टा भी बाजार में आने लग गया ना हमारे इधर, भुट्टा हम खा लेते हैं, तो जो उसका जो तना होता है वो पशुओं चारा बन जाता है।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात है, ये तो बड़ी उम्दा बात बताइए भाई। हमारे श्रोता अगर सुन रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं कि मक्का खाने के बाद जो उसका तना होता है वो पशुओं के खाने के काम आ सकता है। बताइए कौन सा गाना आप सुनेंगे?
1: गीत मैडम सुना दीजिए, आज मुझे फिल्म का नाम है पाकिजा, गीत के बोल है चलते चलते मुझे कोई मिल गया था।
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है आपने। मीना कुमारी और राजकुमार है इस फिल्म में, है ना? देखी थी फिल्म?
1: जी देखी है जी मैंने।
0: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम पाकिजा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं मोहम्मद पोरा श्रीनगर से, जवान मोहम्मद ऋषि
0: जी बताएं क्या हाल है आपका और श्रीनगर का क्या हाल है?
1: श्रीनगर का हाल तो बहुत ही अच्छा है, आजकल तो मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहाना है मौसम है।
0: अच्छा, बारिश हो गई है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी के मौसम में भी सुहाना मौसम।
1: जी बिल्कुल, बारिश भी हो रही है, आज धूप अच्छी है, फिर भी मौसम बढ़िया है और आपके प्रोग्राम सुनते हैं हम, बहुत ही मजा आता है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन हम सभी प्रोग्राम सुनते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना वो पश्चिम का काम, मजा आता है इसमें, रेडियो दिन भर ऑन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: पश्मीने का काम?
1: जी बिल्कुल
0: जी, पश्मीने का शॉल बहुत मशहूर है, लोग जाते हैं जब कश्मीर तो वहाँ से खरीद कर ले आते हैं।
1: जी जी।

0: उसकी खासियत क्या होती है, थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को, कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है?
1: जी बिल्कुल, कौनी जामा होता है ये, मतलब महंगा ही होता है, 1,50,000 1.5 लाख तक भी होता है।
0: जी जी,
1: मतलब एक थोड़ा बहुत कठिन ही काम है, धागे मतलब जैसे पीली से बनाते हैं हम, मतलब हैंड से बनाते हैं हम।
0: इसमें धागे का प्रयोग करते हैं, ऊन का प्रयोग करते हैं?
1: ऊन का होता है, उसमें फिर हम फिर धागे बनाते हैं ना, फिर वो हम पीली पे लगा मतलब उसमें
0: वो जो डिजाइन बनाते हैं वो धागे से बनाते हैं?
1: हाँ, वो धागे से बनाते हैं।
0: तो काफी मेहनत होती है, काफी वक्त लगता है ना। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सहेली फिल्म है, उसी में एक गाना है, इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, लता और हिम्मत कुमार।
0: क्या बात है, बेहद सुरीला गाना पसंद किया आपने, और बहुत दिनों बाद इस गाने की फरमाइश आई है। खुद भी आप गाते गुनगुनाते हैं क्या?
1: थोड़ा बहुत गाते हैं।
0: गाना चाहे तो गा के सुनाइए, हमारे श्रोता भी सुनेंगे आप गुनगुनाएंगे तो।
1: चलिए, आपने कहा तो कोशिश करेंगे। इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है, मेरी खामोशी सजना तेरा इकरार है।
0: बहुत शुक्रिया, सुनते हैं सहेली फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा हूँ।
0: जी मनोहर लाल जी, बताइए क्या हाल है आपका और गाजियाबाद का क्या हाल है?
1: बस ठीक है जी, गाजियाबाद का तो बहुत ही अच्छा हाल हो गया क्योंकि मेरी कॉल लग गई आज विविध भारती।
0: पर गर्मी बहुत पड़ रही है ना, दिल्ली पूरा इलाका बहुत गर्म सुना है हमने।
1: गर्मी तो बहुत पड़ रहा था लेकिन आज मौसम ठीक हो गया, सुबह सुबह अपना बादल आए, थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो मौसम ठीक है आज।
0: बादलों ने सुकून दिया आपको, तो इस सुकून के बाद आप बताइए कौन सा सुकून दे गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी गाना सुनना चाहता हूँ मैं फिल्म चमत्कार का, जिसके बोले इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: जी आप तो गाते भी अच्छा खासा।
1: जी यहाँ पे हम गाते रहते हैं करोके म्यूजिक पे, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे बुजुर्ग दोस्त हैं, यहाँ अपना हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं और गीत संगीत के साथ ही हम जुड़े रहते हैं और बचपन से हम

0: विविध बाहर से सुनते आए हैं, आज भी सुन रहे हैं।
1: क्या बात है, ये जो सब ग्रुप में गाने वाली बात कही, हमारे बहुत सारे श्रोता इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि जब आपके पास फुर्सत के लम्हे होते हैं तो आप सब साथ में गाने गुनगुनाने का, सुनने का एक अलग मजा होता है।
0: संगीत साथ होता है, विविध भारती साथ होता है, तो सकारात्मक सोच भी उत्पन्न होती है और दिल भी हमारा खुश रहता है
1: और बहुत सारे झंझावात तनाव भूल जाते हैं गानों के साथ जब होते हैं, है ना।
0: तनाव तो खैर होता ही नहीं है और बीमारियों से भी हम जो दूर रहते हैं, क्योंकि संगीत एक

0: तनाव भूल जाते हैं गानों के साथ जब होते हैं, है ना?
1: तनाव तो खैर होता ही नहीं है और बीमारियों से भी हम जो दूर रहते हैं क्योंकि संगीत एक थेरेपी की तरह है।
0: क्या काम काज है वैसे आपका?
1: जी मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे,
0: तो साथ में रेडियो चलता रहता
1: है। हाँ जी रेडियो चलता रहता है, ऐप के थ्रू अपना साफ आवाज में हम सुनते रहते हैं यहाँ पे।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम चमत्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार ममता जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, धीरज जबारी।
0: जी बताएं धीरज जी, क्या हाल है आपका?
1: मौसम अच्छा है, मेरा भी अच्छा हाल है और मैं पेड़ों के नीचे से बात कर रहा हूँ। यहाँ मोर भी बहुत है, लेकिन जब हमारी बात हुई जो अगर मोर एक दो टहके तो अच्छा रहे। हाँ। लेकिन ये पक्षी है, हमारे कहने से कुछ नहीं बोलते, अपने आप में बोलते हैं।
0: अच्छा, कौन सा पक्षी है?
1: मोर है, बहुत है मोर। लेकिन
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: अभी बादलों में कई बार बोलते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि जब बोले तब नहीं बोल पाएंगे।
0: उन्हें नहीं पता है ना कि हमें कब बोलना है, कैसे बोलना है। वो किसी के डिसिप्लिन वाले नहीं है ना, वो तो आजाद हैं और उन्हें
1: बिल्कुल,
0: आजाद
1: बिल्कुल।
0: रखना भी चाहिए। तो आपके तो दिन बन जाता होगा, बड़ा खुशगवार दिन होता होगा।
1: ममता जी, हम प्रकृति के अंडर में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: कहाँ काम करते हैं?
1: हम एक फार्म में नौकरी करते हैं और
0: अच्छा,
1: फार्म में पेड़ों की संख्या बहुत है और
0: अरे वाह,
1: मोर है, कबूतर है और पक्षी है, बहुत अच्छा लगता है।
0: वाह,
1: और जो पक्षियों का जो प्रेम होता है ना, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो उसको जब आप दाना डालते, रोटी डालते हैं मोर को, तो मोर बिल्कुल नजदीक आ जाता है, तो वो दृश्य बिल्कुल अच्छा लगता है दीदी।
0: क्या बात है। तो मोर का नृत्य भी देखा होगा फिर तो आपने, मोर का नाचना बड़ा
1: बिल्कुल
0: सुंदर
1: बिल्कुल।
0: लगता है ना।
1: मोरों के बीच में गांव में भी रहते थे और यहाँ भी रहते हैं।
0: विशेष रूप से क्या खिलाया जाता है मोर को?
1: मोर को देखा जाए तो उसको दाना, यानी दाने में ज्वार है, बाजरी है,
0: ये सब।
1: लेकिन हम रोटी डालते हैं तो बाजरे की, गेहूं की, तो वो खा जाते हैं।
0: अच्छा।
1: और वैसे देखा जाए तो जीव जंतु

0: भी खाते हैं, लेकिन दाने भी खाते हैं और मकई का दाना भी खाते हैं, बाजरी ज्वार गेहूं, लेकिन रोटी का उनको बहुत अच्छा रहता है अगर कोई डालता है
1: तो बाकी पक्षी भी आते हैं, गोरैया आती है
0: बिल्कुल चक्री का या गोरैया का प्रमाण बहुत है अहमदाबाद सिटी में। मेरा गाँव डेर है, तहसील जिला पाटन, वहाँ गोरैया बहुत है, अहमदाबाद में कम है।
1: तो गर्मी बहुत पड़ रही है तो पक्षियों के पानी के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? क्योंकि
0: ममता जी बहुत भले लोग है, अहमदाबाद हो गए मुंबई हो, बहुत भले लोग है, पानी पक्षियों के लिए भी रखते हैं, पशुओं के प्राणियों के लिए और इंसानों के लिए, यानी मानवता अभी भी है और ये मानवता के लिए हम जी रहे और हमारा जीवन यानी एक अच्छा जीवन जी रहा है तो हमें अच्छा लगता है कि ऐसे इंसानों के बीच हम रहते हैं।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये जानकर। और पक्षियों की बात की है आपने तो जितने श्रोता सुन रहे हैं इससे आपकी बात से प्रेरणा लेंगे कि जो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पर जगह नहीं होती पानी रखने के लिए, लेकिन एक छोटा सा बर्तन मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं जिसमें पानी रख दिया तो बहुत गर्म भी नहीं होता है तो पक्षी आकर वहाँ पानी पी सकते हैं।
0: खुला पानी ममता जी ठंडा ही रहता है, जैसे झील है तालाब है वो पानी ठंडा ही रहता है क्योंकि पवन रहता है और पानी ऊपर ऊपर से लगे हमें गर्म है लेकिन नीचे से ठंडा रहता है। ऊपर वाले की देन है, वो भी रखवाली करता है सब जीव जंतु की।
1: लगता है आपके आसपास नदी और झील भी है?
0: नहीं, नदी तो साबरमती नदी है और तालाब देखा जाए तो यहाँ कॉरपोरेशन ने बनाए हुए वही तालाब है
1: जी। और नदी साबरमती नदी का नामकरण हुआ है कैसे वो भी आपको पता ही होगा ना?
0: जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, यानी साबर एक नदी है और इसके पर एक जिला भी है साबरकांठा, और जैसे बनासकांठा है वो भी बनास की नदी पर ही है, लेकिन हमारा जो जिला है वो नदी है सरस्वती, उसको कुवारिका बोलते है, जो दरिया में नहीं जाती है, रण में जाती, रेगिस्तान में चली जाती है।
1: क्या बात है, बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो अब गाना आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
0: फकीरा फिल्म का दिल में तुझे बिठाकर लता मंगेशकर के आवाज में गाना सुनना है।
1: तो अब बातचीत करते हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है फकीरा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं यशवंत साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारडिया जिला के विधाम छत्तीसगढ़ से।
0: जी बताइए, क्या हाल है आपका और छत्तीसगढ़ का?
1: जी ममता दीदी बहुत अच्छे हैं हम।
0: जी क्या कर रहे हैं?
1: हम आम के बगीचे में अभी आम खाने हैं, मैं अपनी बेटी को लेकर।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, कौन से आम है, कौन कौन से आम वहाँ पर?
1: अब आम के नाम तो मालूम, लेकिन देसी आम है अपना खुद के, इधर हमारे पूर्वज जो है ना यहाँ पर लगाए हुए हैं आज से 100 साल के पहले आम।
0: वही खा रहे हैं?
1: हाँ, लकड़ी के सहारे से पेड़ में मार रहे हैं, उसके हिसाब से आम गिर रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं। मतलब अभी 10 आम खा चुके हैं दोनों बाप बेटे।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, 10 आम। अब यहाँ महानगरों में शहरों में तो लोग एक आम खा लेते हैं, उसी से पेट भर जाता है।
1: जी मैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 2 साल तक वहाँ पर रुका हूँ।
0: जी
1: आम खाने के लिए हम वहाँ तरसते थे हम आम खाने के लिए।
0: जी, और बाग से तोड़कर बाल्टी में भिगो के आम खाने का मजा अलग ही है। ये बताइए कि आपने कहा कि आपके पूर्वजों ने आम लगाया और वो खा रहे हैं, तो आपने भी कोई पेड़ पौधा लगाया है, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी खाए?
1: हाँ बाड़ी पे लगाया हूँ और खेतों में भी एक दो पेड़ लगाया हूँ।
0: आम का जो बाग है, बाग में ही एक दो पौधा रोप दीजिए, पेड़ बन जाएगा कुछ महीनों में।
1: हाँ लोगों को कहना चाहूंगा कि जैसे कि आम की गुठलियाँ होती हैं, जामुन की गुठलियाँ होती हैं, आप वहाँ पर कहीं भी टूर मतलब रास्ते पार करते हैं, अपने घूमने जाते हैं ना, तो अपने बाइक के डिग्गी में रख ले और कहीं कहीं अपने डाल दे, ताकि वहाँ पर जो बारिश होगी उसके बाद ना अंगूर होकर एक पौधा बन जाएगा, जिसे कोई कोई आम खाएगा तो कम से कम ऊपर वाला देखेंगे।
0: जी बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है साजन की घर और कुमार सानू साधना सरगम जी की आवाज है। गीत के बोल है सावन आया बादल छाए।
0: ठीक है जी, सावन आए बादल छाए, बस इसी उम्मीद के साथ भेज रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ में आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट तक।

0: हेलो फरमाइश
1: जी दीदी नमस्ते
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी दीदी मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: रंजीता जी बताइए अपने बारे में, बताइए क्या काम काज है?
1: जी दीदी मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ और मेरे बच्चे हैं और ऐसे परिवार में है। अभी गर्मी का सीजन है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, जैसे कि जैसे पानी वानी पीना है या कहीं जाना है तो जैसे तावेल लेके जाए, पानी की बॉटल लेके जाए, और साथ साथ में जैसे हमको पता है कि हमें पानी चाहिए, वैसी पक्षी हैं, गाय हैं, इन सभी का जैसे पक्षियों के लिए छोटे छोटे पोला होते हैं मिट्टी के या फिर मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें जाके छत के ऊपर पानी रखना ताकि पक्षी लोग आए और वो भी अपना प्यास बुझा सके।
0: लेकिन आप खुद ये काम करती है?
1: जी करते भी हैं, और जैसे बालकनी वगैरह है तो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनमें भी पानी डालते हैं ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं।
0: और पेड़ पौधों की देखभाल के लिए और घरेलू स्तर पर भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है, सब्जी के जो छिलके होते हैं उसके माध्यम से खाद बनाया जाता है, तो घर पे भी कुछ खाद बनाया जा सकते हैं ना अगर आप बागवानी करती हैं तो।
1: और हमारे इधर तो हम लोग गाँव में है तो घर में जैसे की गाय है भैंस है तो उन लोग का जो गोबर होते हैं उनको भी जैसे की ढाखन की मिट्टी में दबा के उनका भी खाद बनाते हैं और उनको भी सब्जी के लिए खेतों के लिए डालते हैं।
0: ये तो बहुत बढ़िया खाद होता है, गोबर की खाद तो सबसे अच्छी होती है, और जो घरेलू पौधे होते हैं उनमें तो इस खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है। तो आपके गांव में और क्या क्या है, क्या खासियत है गांव की बताइए, कौन से पेड़ पौधे हैं वहाँ पर, ज्यादातर खेती किस चीज की होती है?
1: हमारे तरफ धान की खेती होती है दीदी, और अभी पानी का इंतजार है, जैसे पानी गिरेगा तो धान की फसल डालेंगे हम लोग।
0: तो आपके यहाँ धान कूटने के लिए ओखली भी है, मूसल और ओखली?
1: नहीं अभी तो नहीं है, बहुत पहले
0: हुआ करता था
1: दादी लोग, हाँ हुआ करता था दादी लोग के समय में। ओखली वगैरह का तो नहीं पता दीदी, लेकिन वो ढेकी वगैरह बोलते है ना उस टाइप का था,
0: चक्की जात वगैरह, चक्री है ना।
1: जी जी
0: अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: जी दीदी मैं खुद गर्ज फिल्म का दिल बहलता है मेरा आप क्या जाने से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपकी पसंद का यही गाना। मैं

0: तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक हमें फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभाग का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का STD कोड 022। एक टेलीफोन नंबर और है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 400-24662, मुंबई का STD कोड वही 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 2867-0288 और दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। और हाँ, चलने से पहले आपको ये भी बता दें आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद शफीक से इलाकाई खबरें सुनिए। फ्रांस के साथ मार्शल टाउन को फरोग देने वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेरिस में फ्रांसीसी ताजरीन से मुलाकात की है। चीफ मिनिस्टर हेमंत रेड्डी 30 जून को खम्मम में रईतु भरोसा के तहत माली इमदाद तकसीम करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने पार्टी के कौमी सदर नितिन नवीन को रियासती आमला के इजलास में शिरकत की दावत दी है। और तेलंगाना हुकूमत ने 21 जून को मुनक़िद होने वाले नीट इम्तिहान में शिरकत करने वाले तलबा के लिए RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में मारूफ फ्रांसीसी सनतकारों और कारोबारी रहनुमाओं के साथ आला सतही मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इन मुलाकातों का मकसद हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान इख्तिसादी और सनती ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। वज़ीर आज़म मोदी आज शाम फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के हमरा वाईवीटेक 2026 में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वह मुतअद्दिद अहम प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे और एक कलीदी खिताब भी करेंगे, जिसमें हिंदुस्तान की तेज़ी से तरक्की करती हुई डिजिटल मईशत और आलमी सतह पर इसके बढ़ते हुए असर रसूख को उजागर किया जाएगा। वाईवीटेक यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इवेंट है। इस साल भारत का कौमी पवेलियन सबसे बड़ा होगा, जो हिंदुस्तानी और यूरोपी इख्तराई निज़ामों के दरमियान शराकत दारी के वसी इम्कान की अलामत है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज शाम गुर्रमगुड़ा इको पार्क में पौधा लगाकर वन महोत्सव प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। वो 35.5 करोड़ रुपये मालियत के तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे, जिनमें गुर्रमगुड़ा रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर 17.84 करोड़ रुपये के मंसूबे शामिल हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर मुख्तलिफ अजला बशमूल निज़ामाबाद, मेदक और वरंगल में 17.66 करोड़ रुपये मालियत के इको पार्क्स, अर्बन पार्क्स और जंगली हयात के तहफ़ से मुतालिक बुनियादी ढांचे का वर्चुअल इफ्तिताह भी करेंगे। अब जबकि रीनीट UG 2026 इम्तिहान में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उम्मीदवारों को पुरसकून रहने और अपनी तैयारी पर एतमाद रखने का मशवरा दिया है। एजेंसी ने यकीन दिलाया है कि इम्तिहान का अमल महफूज, मुनसिफाना और शफाफ होगा, जबकि बदनवानी और नकल की रोकथाम के लिए सख्त हिफाजती इकदाम किए गए हैं। इम्तिहानी दबाव या जहनी परेशानी का सामना करने वाले उम्मीदवार मानस हेल्पलाइन नंबर 14416 पर जहनी सेहत से मुतालिक मदद हासिल कर सकते हैं। NTA ने आवाम से अपील की है कि इम्तिहान मुलतवी होने की अफवाहों पर तवज्जो न दें और सिर्फ सरकारी ऐलानात पर भरोसा करें। इस दौरान तेलंगाना हुकूमत ने 21 जून को मुनक़िद होने वाले नीट

0: तेलंगाना हुकूमत ने फैसला किया है कि रईत भरोसा स्कीम के तहत माली इमदाद 30 जून को जारी की जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जिले खम्मम के मदिरा में मुनक़िदा एक अवामी जलसे के दौरान इस माली इमदाद की बाज़ाब्ता तकसीम का आगाज करेंगे। हुकूमत का हदफ है कि मानसून फसलों के लिए मुख्तस ये रकम 10 दिन के अंदर अहल किसानों के बैंक खातों में मुंतकिल कर दी जाए। ये फैसला सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर की सदारत में मुनक़िदा एक खसूसी आला सतही अजलास में किया गया, जिसमें हैदराबाद मेट्रो रेल की तोसी, धान की खरीदी, VBG रामजी स्कीम और रियासत के हवाले से मरकजी हुकूमत के मौक़िफ जैसे अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। बंदरगाहों और जहाज़रानी की वजारत के डायरेक्टर ओपेश कुमार शर्मा ने कहा है कि LNG मालबरदार जहाज़ दिशा कल सुबह गुजरात के दहेज बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। यह जहाज़ 62,370 मेट्रिक टन कार्गो ला रहा है। इस जहाज़ ने पीर को आबनाए हुरमुस को पार किया।
1: The Malta flag LNG carrier Disha had crossed Strait of Hormuz on 15 June carrying about 62,370 metric ton of LNG cargo. The vessel is expected to berth at Dahej tomorrow morning. The ministry through Director General of Shipping remains in continuous coordination with the Ministry of External Affairs to ensure safety and welfare of Indian seafarers and provide all necessary assistance.
0: मरकजी हुकूमत ने कहा है कि तमाम रिफाइनरीज अपनी भरपूर गुंजाइश के मुताबिक काम कर रही हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल का काफ़ी स्टॉक बरकरार रखा जा रहा है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने आज दिल्ली में बताया कि गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान 1.36 करोड़ LPG सिलेंडर्स की बुकिंग हुई, जबकि 1.47 करोड़ सिलेंडर्स फराहम किए गए।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। LPG बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख PNG कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर पी यशवंत ने कहा है कि नशा मुक्त भारत के हदफ को हासिल करने के लिए मरकजी हुकूमत के तमाम प्रोग्रामों को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने आज खुसूसी तौर पर आकाशवाणी से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही।
3: Honorable Union Prime Minister, Union Home Minister, Union Chief Minister and all the senior officers of the Narcotics Control Bureau. एक ही हमारा मोटो नशा मुक्त भारत फुल्ली उसको इम्प्लीमेंट करने का है। जो हमारा मोटो है से नो टू ड्रग्स और से यस टू लाइफ फुल्ली उसको इम्प्लीमेंट करने का है, बिकॉज वापस आना बहुत मुश्किल क्योंकि एक बार आप ड्रग्स के साइड जाने के बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
1: सेंट कोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस समय विवाटेक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: For the 10th edition of VivaTech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
0: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में

0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
1: पत्तन रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मेट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले तीन दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। बम्बई शेयर बाजार का संविदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो। उन्होंने पेरिस में वीवाटेक समिट में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट में टेक्नोलॉजी

0: टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस के बड़े कारोबारी लीडरों के साथ भारत में सरमायाकारी के मौके और तौसी के मंसूबों पर तबादला ख्याल भी किया। वज़ीर-ए-तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के इतवार को होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमरीका के दरमियान 9 दस्तखतशुदा मफाहमत नामों को एक तारीखी दस्तावेज करार दिया। यूक्रेन ने एक हफ्ते में दूसरी मर्तबा मॉस्को तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। और मीनाक्षी हुडा चीन में जारी मुक्केबाजी के आलमी कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। कल चार भारतीय मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल में मुकाबला करेंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस में वीवाटेक 2026 समिट से खिताब करते हुए भारत को इख्तिराआत और टेक्नोलॉजी के एक आलमी मरकज के तौर पर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो। उन्होंने कहा कि भारत ये मानता है कि रखना अंदाजी के इस अहद में टेक्नोलॉजी हर हाल में सब तक पहुंचाई जाए। उन्होंने आलमी इख्तिराआतकारों से भी जोर देकर कहा कि वो भारत के साथ मिलकर काम करें और सब तक इसे पहुंचाएं।
1: इंडिया बिलीव दैट इन दिस एरा ऑफ डिसरप्शन टेक्नोलॉजी मस्ट डिलीवर फॉर ऑल। लेटेस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ एआई। एआई मस्ट इम्प्रूव लाइफ, वाइडन एक्सेस, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation at the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision.
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछली एक दहाई में भारत में एक तेज रफ्तार कायापलट हुई है जो टेक्नोलॉजी की नहीं निमिन्नत है। जनाब मोदी ने फ्रांस के सरकर्दा कारोबारी लीडरों के साथ भी मीटिंग की ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी और तकनीकी तआवुन को और भी मजबूत किया जा सके। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: पेरिस में वीवाटेक 2026 समिट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी हर हाल में सब तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने मालियाती शमूलियत, तालीम, हिफ्जान सेहत और ज़राअत जैसे शोबों में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट को उजागर किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अब दुनिया के बरवक्त होने वाले डिजिटल लेनदेन का तकरीबन आधा हिस्सा यूपीआई से तय पाता है और अब ये फ्रांस में भी दस्तयाब है। इससे कबल दिन में आज जनाब मोदी ने फ्रांस के बड़े सीईओ से मुलाकात की। सेंट गोबेन, मिस्टर लेआए और सीएमए सीजीएम लीडरों ने भारत की तरक्की के इम्कानात में एतमाद का इजहार किया और मैन्युफैक्चरिंग, मसनूई जहानत और सब्ज जहाजरानी के शोबों में ज्यादा सरमायाकारी और शराकतदारी के मंसूबों का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त एक अजीमुशान सकाफती प्रोग्राम बोंजो में शिरकत कर रहे हैं जिसे पेरिस में सॉल पेलेल सेंटर में भारतीय बरादरी ने मुनाकिद किया है। फ्रांस के शहर पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीब रहमान।
0: वज़ारत खारजा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के अहम नतायज को उजागर किया। पेरिस में मीडिया से बातचीत करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि दौरे के दौरान तीन अहम सुतूनों तिजारत, टेक्नोलॉजी और इलाकाई नीज बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने नीस में मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स स्कीम का इफ्तिताह किया जो भारत में टेक्नोलॉजी की महारत वाले स्टार्टअप्स के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। इस प्रोग्राम में भारत के 120 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने शिरकत की। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इतवार को नीट यूजी के दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने की गरज से आज आला सतह की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने इम्तिहान के अमल में सालमियत, शफाफियत और सलाहियत के आला तरीन मेयार को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने तमाम मुतालिका अहलकारों को हिदायत दी कि वो निगरानी कायम रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि दोबारा होने वाले इम्तिहान को आजादाना और सिफाना तौर पर मुनाकिद किए जाने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम हों। जनाब प्रधान ने कहा कि वजारत की जानिब से नामजद अफराद तमाम रियासतों में तैनात होंगे ताकि वो इम्तिहान से मुतालिक सरगर्मियों से तालमेल कायम रखें और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की सदारत में कायम मरकजी कमान सेंटर को रिपोर्ट करें। میٹنگ کے دوران ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے

भी ये कहा गया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उम्मीदवारों को सभी जरूरी सहूलियात मुहैया कराई जाएं, जिसमें इम्तिहान में बैठने की मुनासिब इंतजाम और पीने का पानी शामिल है, ताकि वो हर किस्म के दबाव से पाक माहौल में इम्तिहान दे सकें। नीट यूजी इम्तिहान 2026 में अब जबकि सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने एक पैगाम जारी करते हुए कहा है कि उम्मीदवारों को चाहिए कि पुरसुकून रहें और अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। एजेंसी ने कहा कि उम्मीदवारों ने पूरे साल सख्त मेहनत की है, लिहाजा अब उन्हें मुनासिब सुकून और इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। एनटीए ने एक महफूज, मुनसिफाना और शफाफ माहौल में इम्तिहान मुनाकिद कराए जाने की यकीन दहानी भी कराई है। वजारत तालीम ने आज बताया कि यूनिवर्सिटी की QS आलमी दर्जाबंदी 2027 में 52 भारतीय तालीमी इदारे शामिल हैं। भारत की जानिब से सबसे ऊपर के दर्जे में IIT दिल्ली है, जो आलमी सतह पर 118वें नंबर पर है, जबकि IIT बॉम्बे और IIT मद्रास भी दुनिया की बेहतरीन 200 यूनिवर्सिटीज में शामिल हैं। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि आलमी सतह पर भारत के तालीम से मुतालिक नक्श कदम मुसलसल वसत इख्तियार कर रहे हैं। अकलियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में 2027 की हज जायजा मीटिंग की सदारत की। जायजा मीटिंग के बाद नामा निगारों से गुफ्तगु करते हुए जनाब रिजिजू ने 2026 के हज को भारत की तारीख में सबसे ज्यादा कामयाब हज करार दिया। वजीर मौसूफ ने बताया कि 2026 के हज के लिए सऊदी अरब के हज और उम्रे की वजारत ने भारत को 2 लब्बैतुम अवार्ड अता किए। उन्होंने बताया कि सरकार 2027 के हज के लिए जल्द ही नई हज पॉलिसी का ऐलान करेगी। मरकजी वजीर अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई जायजा मीटिंगों की सदारत की और कोऑपरेटिव बैंकिंग, नामियाती मसनूआत और कोऑपरेटिव बरामदात को मुस्तहकम करने के कौमी लाए अमल का जायजा लिया। कोऑपरेटिव बैंकिंग की बड़ी स्कीमों का जायजा लेने के दौरान जनाब शाह ने टेक्नोलॉजी को इख्तियार करके हुक्मरानी को बेहतर बनाकर और साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल अदायगी, खिदमात के मुश्तरका प्लेटफॉर्म और खिदमात की फरोखशुदा डिलीवरी के जरिए कोऑपरेटिव बैंकिंग को मुस्तहकम करने की गरज से किए गए मुख्तलिफ इकदामात की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। कॉरपोरेट उमूर की वजारत ने एक बयान में बताया कि आने वाले वर्षों में मुजव्वजा कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया और कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के तआवुन में उसके किरदार के मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कोऑपरेटिव बैंकों के लिए सहकार सारथी टेक्नोलॉजी की मदद से किए जाने वाले इकदामात की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ईरान के सदर मसूद पेसिशकियान ने ईरान और अमरीका के दरमियान तय पाए नए मफाहमत नामे को एक तारीखी दस्तावेज और एक मजबूत ईरान की जानिब से पैगाम दिया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अमन सिर्फ बाहमी एहतराम के जरिए हासिल किया जा सकता है और उन्होंने अपने वक़ार, आज़ादी और इलाकाई तआवुन के तहफ्फुज़ के साथ आलमी अमन के तय ईरान के अज़्म की तौसीक की। वर्साय में G7 समिट से अलग फ्रांस के सदर इमानुअल मैखों के साथ एक इशाइये के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे। दस्तावेज पर दस्तखत करने से कबल सदर ट्रंप ने कहा था कि यह समझौता तय पाना आसान नहीं था। दस्तखत किए गए मुआहदे को बाद में तेहरान भेजा गया और फिर सदर पेजिशकियान ने इस पर दस्तखत किए। फ्रांस के सदर इमानुअल मैखों ने इस मुआहदे का ये कहकर खैर मकदम किया कि इससे देरपा अमन और आबनाए हुरमूज के दोबारा खोले जाने के लिए राह हमवार होगी, जिससे आलमी सतह पर तवानाई की कीमत में कमी आने में मदद मिलेगी। यूक्रेन ने मॉस्को की एक तेल रिफाइनरी पर इस हफ्ते के दौरान दूसरी मर्तबा रातों रात हमला किया। इसके अलावा रूस के रोस्तोव खित्ते में कई मकामात को निशाना बनाया गया है। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने यह कहकर इन हमलों की तस्दीक की कि मॉस्को के जुनूब मशरकी मजाफात में वाकई मॉस्को तेल रिफाइनरी पर कई ड्रोन से हमला किया गया। रूस की वजारत दिफा ने बताया कि मुल्क भर में यूक्रेन के 555 ड्रोन्स को बीच में ही रोककर जाया किया गया। रूस की ट्रांसपोर्ट वजारत ने बताया कि हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से परवाजें रोक दी गईं। रूस की सरकारी खबर रसा एजेंसी ने कहा है कि मॉस्को पर यह

0: इस बरस के सबसे बड़े हमले में से एक है। इधर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को रूस की जारी फौजी कार्रवाइयों के जवाब में एक काबिले जवाज रद्द अमल करार दिया। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क की तमाम रिफाइनरीज अपनी आला तरीन गुंजाइश के साथ काम कर रही हैं और उनके पास खातिर ख्वाह खाम तेल दस्तियाब है। साथ ही पेट्रोल और डीजल का मुनासिब जखीरा भी बरकरार रखा गया है। मगरबी एशिया में हालिया वाकयात के तनाजुर में नई दिल्ली में आज बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,36,00,000 एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग मौसूल हुई है, जबकि 1,47,00,000 सिलेंडरों की डिलीवरी दी गई है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसीफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी रास्तों की वजारत में डायरेक्टर उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि माल्टा के झंडे वाला एलएनजी जहाज दिशा, जिस पर 62,370 मैट्रिक टन एलएनजी है, कल सुबह गुजरात के दहेज बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। ये जहाज पीर को आबनाए हुरमुस से निकला था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक बड़े नए जाब्ते को मंजूरी दी है, जिसके तहत सोशल मीडिया के लिए कम से कम उम्र 15 बरस तय की गई है। इस बड़े कदम का मकसद डिजिटल स्पेस में बच्चों के तहफ्फुज़ को मुस्तहकम करना है। शेख मोहम्मद बिन राशिदुल मख्तूम की सदारत में मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना ने यह फैसला किया। इस करारदाद के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और चलाने की इजाजत नहीं होगी और ना उन्हें इंटरेक्टिव फीचर्स से, जैसे किसी मवाद को पोस्ट करने, उस पर कमेंट करने या उसे शेयर करने या पब्लिक ग्रुपों को ज्वाइन करने तक रसाई हासिल होगी। 15 से 16 साल तक की उम्र के बच्चों को महदूद रसाई हासिल होगी, लेकिन वो सख्त निगरानी में ही रसाई हासिल कर पाएंगे। प्लेटफॉर्म्स को इन जाब्तों पर पूरी तरह से अमल करने के लिए 12 महीने का वक्त दिया गया है। चीन के गियांग में जारी आलमी मुक्केबाजी कप 2026 में आज भारत की मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मीनाक्षी ने खवातीन के 51 किलोग्राम जुमरे के 16 प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में पोलैंड की नटालिया को 5-0 से शानदार जीत हासिल की। 51 किलोग्राम के खवातीन के जुमरे में मीनाक्षी का मुकाबला कजाकिस्तान के अलाउ बाल्की बेकोवा से, जबकि 65 किलोग्राम जुमरे में स्नेह का मुकाबला पोलैंड की किंग करोका से होगा। क्वार्टर फाइनल में 57 किलोग्राम जुमरे में प्राची का मुकाबला चीनी ताइपे की चैंग यू यांग से होगा। 55 किलोग्राम के मर्दों के जुमरे में निखिल का मुकाबला आजरबाईजान के अमीन मोहम्मद ज़ादा से होगा। खवातीन मुकाबलों में 48 किलोग्राम जुमरे में ज्योति और 85 किलोग्राम में जुगनू ने पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाकर भारत के लिए तमगे को यकीनी बना लिया है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीरे आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो। उन्होंने पेरिस में वीवर टेक समिट में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को उजागर किया। वजीरे आजम ने फ्रांस के बड़े कारोबारी लीडरों के साथ भारत में सरमायाकारी के मौके और तौसी के मंसूबों पर तबादला ख्याल भी किया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के इतवार को होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमरीका के दरमियान 9 दस्तखत शुदा मफाहमतनामों को एक तारीखी दस्तावेज करार दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: कुछ ही पलों के बाद

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झंकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दान

डांसिंग का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत डांसिंग के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन 1.5 बरस बीत गया। डांसिंग खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि डांसिंग की प्रति

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि दानसिंह ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में दानसिंह को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना। गोरा गोरा

0: आया है।
1: यहाँ आपको बता दें कि असल में बी.एन. शर्मा जिन्होंने भूल न जाना का निर्माण किया था, वो फ्लैट में दान सिंह के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। दान सिंह ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का

सिंह के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। दान सिंह ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल न जाना का।

फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964, मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त ये गाना गा रही हैं।

लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल न जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारेलाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में।

आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी, और सैक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है, तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माय लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की वानगी देखिए।

अफसोस, 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दानसिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।